0: यार सच कहूं, वेकेशन के बाद ना वेकेशन की थकान हटाने के लिए एक्स्ट्रा वेकेशन होना चाहिए, है ना?
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, आप सभी का दिल वाला स्वागत. I'm pretty sure ईद का जश्न जो है इस बार काफी धूमधाम से मनाया गया है. जहाँ पे एक तरफ ईद की छुट्टियां हुई, वहीं दूसरी तरफ कंटिन्यूस एक्सटेंडेड वीकेंड ने इस छुट्टियों में चार चांद जो है वो लगा दिया. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आप गए तो गए कहाँ कहाँ कहाँ, जरा घूमाए, अरे मिठाई का डब्बा लाए या ना लाए. Well, I'm pretty sure आप सबने खूब मजा किया, खूब एंजॉय किया. इनफैक्ट हमने भी कतर में इस वक्त बहुत अच्छी तरह से ईद के जश्न को मनाया. तो वेल, अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी मस्ती हो चुकी है, इतनी बातें हो चुकी हैं, इतना काम हो चुका है कि अब सारी मस्ती की थकान को हटाने के लिए दो तीन दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी जो है ना वो हो जाए. क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है घूम फिर के आने के बाद, ज्यादा एंजॉय करने के बाद? 5001896.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtuala burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: अजीत जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले आ रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू
2: कुकुड़।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1.

वो ललका याग्निक के अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज में बड़ा लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट तमाशा। भाई ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आप और हम साथ हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत खूबसूरत हो ही जानी है।

very good morning. Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajaan Show with you. And what an exciting ride it has been. Well, pichle 5 din ki dastan ko is waqt batane ki koshish karu, bayan karne ki koshish karu, bhai. Maza aa gaya yaar. Matlab is baar jo hai Eid ki chuttiyan genuinely agar kuch lagi, kuch feel hui to wo hai Eid ki chuttiyon ki tarah. Kyunki kehte hai na, jab bina kisi break ke extended weekend aapke life mein aata hai, itni lambi chutti aapko ek saath milti hai to kahin na kahin aapko rejuvenate hone ke liye, recharge hone ke liye additional chutti ki zarurat padti hai. जैसे कि अब से कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, लेकिन भाई अब जो है ना सिलसिला छुट्टियों वाला करेंटली जिंदगी से खत्म हो चुका है, तो एक बार गेट बैक टू ट्रैक करते हैं, ऑफिस वाली जिंदगी फिर से शुरू करते हैं. अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर्स की अगर आप बात करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करो, तो सब फुल्ली ऑपरेशनल होने वाले हैं. बच्चों की स्कूल्स को अगर देखने की कोशिश करें तो वो भी अब रिज्यूम हो रही है. कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि आप जब ऑफिस निकलेंगे, बच्चे जब अपने अपने स्कूल के लिए निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं मम्मियों की छुट्टियां जो है एक बार फिर से शुरू होंगी. वुमेन हु हैव बीन फुल्ली एंड कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इतनी सारी दावतों के साथ घर पे सबको संभालते संभालते, कहीं ना कहीं अब जो है वो राहत वाली सांस जो है ना 101% मिलेगी, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर अ होममेकर और नहीं. होम मेकर तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि 24/7 की जो जॉब होती है ना, सबसे बड़ी वाली बस उन्हीं की होती है. चलिए जी, इस वक्त अगर आप जो है काम पे निकल चुके हैं, मेरे साथ कनेक्टेड है, तो यार बताना तो बनता ना दैट आंसर. यस, वी आर इन दिस टुगेदर. 5000 1896 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरिया मिर्ची अंशु. एंड साथ में ये जरूर बताना कि इस बार इन छुट्टियों में किया तो क्या क्या, कहीं बाहर गए थे, कतर में थे, क्या क्या है यार. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. अरमान मलिक के नीति मोहन की आवाज में आसमान को छोड़ के इस वक्त मैं आपके पास आ चुकी हूँ. पूरे काउंट किए मैंने 100 आसमान. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

वर्ल्डर्शन रॉबलिन रोचर कोहली की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, लेकिन बस आपके लिए यू नो इस गाने को जरा सा मॉड्यूलेट कर देते हैं दैट एक लड़की को सुना तो ऐसा लगा

Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Anshu with you and we couldn't be more excited. Well, ab se kuch der ke liye technical glitch ki wajah se ek zara sa gap jo hai is waqt aapne feel kiya, lekin itna bata do, is waqt agar aap Qatar ko dekhne ki koshish karenge to itni sari exciting cheeze lined up hai jinse aap bilkul bhi dur nahi reh payenge. And as baar Eid ke vacations mein, holidays mein jo kuch bhi hua, ye to sirf ek picture hai, ek trailer tha. Having said that, itna bata do, aane wale dino ko aap dekhne ki koshish karenge. Agar main real estate world ki baat karu, construction jagat ki बात करूं तो कतर का सबसे बड़ा इवेंट एक बार फिर से अपने बेहतरीन एडिशन के साथ लौट रहा है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कतर 2026. वेल, 9th ऑफ जून से लेकर 11th ऑफ जून तक बिल्कुल मिडिल ईस्ट की बात करें या ग्लोबल स्केल की बात करें, सारे के सारे बड़े बड़े बिल्डर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स जो है कतर में जरूर पहुंचेंगे. एंड इसके साथ ही हमें ये बताएंगे कि फ्यूचर जो है आज हमें कैसा दिखाई देता है. तो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर 9th टू 11th ऑफ जनवरी, मार्क योर कैलेंडर्स एंड आई एम गोना बी सीइंग यू देयर. मीनवाइल, इश्क विश्क रीबाउंड से ये अगला प्यारा सा गाना एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
2: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: अकबर.
5: अकबर हू?
4: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
5: खट खट, हू दैट?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Kahve Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Ya bana.
1: Burga, burga. Nefis bana burga.
2: Mirci burga.
3: Hello.
4: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो
4: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: मोबाइल पे
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
3: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
8: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: व्हाट अ सुपर पावर पैक ट्रैक इट इज. वैसे इतना बता दो, ईएम मास टर्म की बात करूं तो आज कईयों के मुंह से ना ये जो है जरूर निकलने वाला है.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, finally वो हमारी जिंदगी में आ चुका है. Well, इस वक्त मेरे साथ जितने भी क्रिकेट फैंस कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज का दिन कितना खास, कितना स्पेशल है. बिकॉज टुडे वी आर गोना बी विटनेसिंग लाइव द ग्रैंड फिनाले ऑफ IPL 2026. And yes, we couldn't be more excited. Yes, सच कहूं, आज के फिनाले की अगर हम बात करें तो जितनी खुशी है ना कहीं एक जरा सा गम का साया भी है. अब वो क्यों है, इसकी बात जो है ना हम पहले करते हैं. यार, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बंदा जो महज 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा कमाल करने लगा या अपने बल्ले का ऐसा जादू दुनिया में चलाने लगा कि जितने लोगों ने कहीं ना कहीं क्रिकेट को फॉलो करना बंद भी कर दिया था, उनके अंदर एक रिन्यूड अटेंशन आया, यू नो, उनके अंदर एक रिन्यूड पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आया क्रिकेट को लेकर, एक बार फिर से उनका रुझान बढ़ा. एंड अगर वो किसी नाम से जुड़ा ना यार, तो आप शायद मेरे साथ अग्री जरूर करेंगे, उस बंदे का नाम, उस बच्चे का नाम है वैभव सूर्यवंशी. यार, क्या कमाल का प्लेयर है यार, क्या कमाल का उसका जज्बा, उसका डिटर्मिनेशन. यार, उसकी मासूमियत जो है ना वो पूरी तरह से एक तरफ है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप पूरे दिल से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. ये बात जेन्युइनली अगर शाहरुख खान ने कही थी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बच्चे के दिल के लिए, इस बच्चे के नाम कही थी. तो फाइनली जब एक बार राजस्थान की टीम को इस टूर्नामेंट में फिनाले से बाहर होते हुए देखा ना यार, दिल जो है वो टूटा, एंड बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा. कहीं ना कहीं हम सब जो हैं ये उम्मीद कर रहे थे कि नहीं यार, राजस्थान की टीम को फाइनल्स में पहुंचना चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं पता. लेकिन सबके दिल में अगर कोई ख्याल था तो एक बार फिर से वैभव को खेलते हुए देखने का मौका जो है ना हम छोड़ना नहीं चाहते थे. इनफैक्ट कई लोगों ने बस एक बार फिर से स्केड्यूल देखना शुरू किया था कि यार वैभव कब खेल रहा है, क्योंकि IPL के नए चेहरे की बात करें ना तो उस वक्त अगर मेरा जहन में कुछ आता है या कोई आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी. अब वैभव की कहानी तो इस वक्त मैंने आपके बीच जरूर पेश की, अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो यार एक थम्सअप तो भेजना बनता है. 5000-1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. लेकिन अब से कुछ देर में होंगी बातें आज के ग्रैंड फिनाले के बारे में, एक बार फिर से बहुत ही एक्साइटिंग सा मुकाबला जिसे हम शायद देखने के लिए बेसब्र होंगे, बेकरार होंगे. क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ बात करेंगे ना. लेकिन अभी बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. मीनवाइल मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मीट ब्रोस की पावर पैक आवाज कनिका कपूर का साथ एंड व्हाट अ सुपर ट्रेंडिंग ट्रैक इट इज। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस मोमेंट का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, जरा उसकी बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, very good morning, welcome back. You are listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you and I couldn't be more excited. Well, पूरे सीजन इंतजार करने के बाद फाइनली वो तारीख हमारी जिंदगी में आ चुकी है जब फाइनली हमें अगर कुछ देखने को मिलेगा तो वो है महामुकाबला। And I'm talking about the grand finale of IPL season 2026. देखिए, अगर दो ऐसी टीम्स की बात करूं जिनका आज आमना सामना होने वाला है तो भाई एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियंस यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनका कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से हाई है, मोमेंटम भी हाई एंड सपना जो है शायद बैक टू बैक ट्रॉफीज का इनका पूरा हो ही जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें तो वो है गुजरात टाइटंस, एक ऐसी टीम जिसने सिर्फ 5 सीजन में 3 बार फाइनल तक का सफर जो है ऑलरेडी तय कर लिया है, तो कंसिस्टेंसी जो है इसका दूसरा नाम ये टीम है। लेकिन यार इस बार जितने भी विराट फैंस है ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये एक बार फिर से हमारी निगाहें जो है ना जब विराट आएंगे कुछ इस विराट तरह से स्क्रीन पे टिकी होंगी कि दिल जो है ना बस यही बोलेगा कि भैया अगर विराट अच्छा खेल रहे हैं तो जिस पोजिशन पे जैसे बैठे हो बस हिलना नहीं तुम और टीवी जो है बिल्कुल बंद नहीं करना, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देखने से स्कोर में कुछ इधर उधर हो रहा है तो बस कुछ देर के लिए तुम जो ना स्क्रीन के सामने से हट जाना। नहीं, हमारे तो ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन अगर गुजरात की टीम की बात करें भैया तो शुभमन गिल जो है इस वक्त पूरी तरह से फॉर्म में है, साथ में जब साई सुदर्शन हो, जोस बटलर हो, भैया आप समझ सकते हैं कि होगा और क्या कुछ नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बार जीत होगी तो किसकी होगी, ये साला कप नामडे होने वाला है या तो फिर आवा दे कप गुजरात नू। आपके हिसाब से आज कौन सी टीम जो है फाइनली सीजन की ट्रॉफी को घर लेकर जाने वाली है, आपका क्या कहना है, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? या फटाफट से मैसेज करें, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। 5001896 लेट्स गेट कनेक्टेड। इतना बता दू जितने लोग मैच देख रहे हैं, जब देखो स्क्रीन का ना, अब वो आपको वीडियो लेके मिर्ची वन कतर एंड मिर्ची अंशु को इंस्टाग्राम में टैग जो है वो जरूर करना है, भैया हम मिलकर देख रहे होंगे, वो फीलिंग आ जाएगी। मिका सिंह की आवाज, असीस कौर का साथ, एंड ये अगला पावर पैक गाना, लेट्स एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: जुबिन नौटियाल एंड तुलसी कुमारी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। अब आपसे जब मुलाकात हो ही गई है तो ये गाना बनाना तो बनता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. And believe me, I genuinely missed you. अगर मैंने सबसे ज़्यादा कुछ मिस किया तो बस वो वक्त जब मेरी आपसे बातें हुआ करती थी। नहीं, usually तो one sided conversation चलती है ना आपके घर की तरह जहाँ पे usually लड़कियाँ जो है बोलने का काम करती हैं, आपका काम ये होता है कि चुप करके सुनते रहो। ये हर तरह से सुखद जीवन का है, ये मंत्र है। अब एक सिद्ध है, लेकिन अब जो है मैं बिल्कुल आपको बोलने का मौका दूंगी, बहुत अच्छी तरह से दूंगी, क्योंकि आपके बीच एक बहुत ही खूबसूरत सी कॉन्वर्सेशन है जो मैं पेश करने वाली हूँ। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, साथ में मुझे ये बताना है कि ये बातचीत आपने सुनी तो किस फिल्म में सुनी। बड़ी ही प्यारी सी कॉन्वर्सेशन है यार, बहुत ही खूबसूरत सी बंदी है, बंदा जो है काफ़ी दिलचस्प एंड एक्साइटिंग है। तो बस अब मैं कम बोलती हूँ, इन्हें ज़्यादा बोलने देती हूँ। एंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन वो दो लोग हैं एंड साथ ही ये बातचीत कौन सी फिल्म से है, तो फटाफट से मुझे करेक्ट आंसर भेजें। लेकिन कहा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5000 1896 5000 1896। आई विल ईगरली वेट फॉर योर मैसेजेस। एंड meanwhile here we go with this conversation.
2: tu jo karna chahta hai tu kar, jitna time lena chahta hai le, main tera wait karti rahungi, tujhse pyar karti rahungi, mummy papa ji se ladti rahungi, yahi sunna chahta hai na tu? par kya, tu jo karna chahta hai tu kar, jitna time lena chahta hai le, main tera wait karti rahungi, tujhse pyar karti rahungi, mummy papa ji se ladti rahungi, yahi sunna chahta hai na tu?
0: नहीं, हम सुनना नहीं चाहते, हमें पता है आप ऐसा करेंगी अब मुझे फटाफट से बताएं कि आवाज़ है तो है किसकी एंड साथ ही किससे ये अपनी दिल की बातें बयां कर रही हैं। इस फिल्म में आपने सीन देखा यार। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल आयुष्मान खुराना की आवाज़ में अगला प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुँचा दूँ। एन्जॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
6: कटकटे,
7: अबे कौन है?
6: उत्तपा।
7: उत्तपा कौन?
6: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: Only on 89.6 Mirchi 1.
1: Mirchi, it's hot. It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
2: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: वेल खान साहब की आवाज शाश्वत सचदेव का साथ, फिल्म का नाम धुरंधर, यानी गाना जो है धुरंधर वाली एंट्री करके एक बार फिर से आपकी और हमारी जिंदगी में आ ही गया। लेकिन भाई सॉलिड एंट्री की अगर बात करें तो किसी और ने भी कर ही लिए। Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, आपसे कुछ देर पहले सॉलिड डायलॉग की एंट्री जो है मैंने आपकी जिंदगी में कराई है, साथ में आपसे ये पूछा था कि ये कॉन्वर्सेशन है तो है किस फिल्म से। अब एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से वो डायलॉग एक बार मैं फिर से सुनाती हूँ एंड अगर आपको लगे कि अभी भी सुनने के बाद आपने पहचान लिया है कि किस फिल्म से है तो मुझे करेक्ट आंसर भेज देना। लेकिन कहा 5000 1896 5000 1896, आई विल ईगरली वेट फॉर योर मैसेजेस, बट फॉर नाउ हियर यू गो विद द ऑडियो।
1: तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम लेना चाहता है ले, मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी, मम्मी पापा जी से लड़ती रहूंगी, यही सुनना चाहता है ना तू।
0: मैंने आपसे कहा ना हम सुनना नहीं चाहते, हमें पता है आप ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। वह जितने भी लोगों का रिप्लाई आया इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर आप ऑडियो के जरिए भेजते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख कर भी भेजा, हमने उससे भी दिल से कबूला है, दिल से एक्सेप्ट किया है। वह अगर इस फिल्म की हम बात करें तो यार ये फिल्म है शेरशाह, वेल कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, उनके करज, उनके सैक्रिफाइस एंड क्या ये खूबसूरत सी लव स्टोरी, एंड इस किरदार को बहुत ही प्यारी तरह से अगर किसी ने निभाया तो वह सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी। वैसे ये जो आवाज़ आपने सुनी ना ये बिल्कुल कियारा आडवाणी की थी। यार इतना बता दूँ अगर इन दोनों को रिश्ते के देखने की कोशिश करें तो इस फिल्म से शुरू हुई इनकी लव स्टोरी एक बहुत ही ड्रीमी वेडिंग के तौर पर अगर कहीं पूरी हुई, सो दैट वॉज ईयर 2023 जब जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में इनकी शादी बहुत ही धूमधाम से बहुत ही खूबसूरत तरह से पूरी हुई। एंड इसके बाद इस वक्त इनकी ज़िंदगी में अगर कोई है तो बहुत ही खूबसूरत सी प्रिंसेस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सराया। हाँ, सराया का मतलब ही होता है गॉड्स प्रिंसेस या प्रिंसेस। बढ़िया है यार। वेल, पता है जब भी मैं ऐसी कोई स्टोरी को देखने की कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं एक बात लगती है कि लाइफ में अगर आप सोचते हैं, महसूस करने की कोशिश करें तो जेन्युइनली प्यार से ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती यार, कोई हो ही नहीं सकती, अभी चाहे किसी शख्स से हो या खुद से हो, लेकिन लाइफ में प्यार का होना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, ऑल यू नीड टू डू टू फील इट, महसूस करो। एंड अगर लगता है अंशु से भी प्यार है, भाई एक वो रेड वाला येलो वाला हार्ट तो बनता ना यार। 5000 1896 messages Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu. Meanwhile, Mirchi Mornings is brought to you by
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Grabala.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ लेती,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ओ चले, कल से मुलाकात जरा आज ही कर लें।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Aanchu with you. Well, अगर आपको भी लगता है कि कतर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर बिल्ड भी कर रहा है तो बस एक ऐसा इवेंट जो इस बात में अपनी मोहर लगाने वाला है उसका नाम है प्रोजेक्ट कतर 2026. Absolutely, Project Qatar 2026 is back and guess what? This is the 22nd edition and this is going to be one of the biggest and most prestigious construction and infrastructure exhibitions in the region. 9th of June se lekar 11th of June tak Doha Exhibition and Convention Center mein duniya bhar ke innovators, engineers, architects, construction experts and saath hi industry leaders ek hi roof mein aapko nazar aayenge. And sabse khas baat ye hai ki is baar ka edition sirf exhibition nahi hai. Ye wo jagah hai jahan aap apne future ko शेप होते हुए देख सकते हैं विद स्मार्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग आइडियाज, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मोर. एंड सबसे खास बात यह है कि इस बार के अगर फोकस को देखने की कोशिश करें तो ये पूरी तरह से इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, कतर्स पाथ टू 2030. मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स की बात हो नहीं रही है बल्कि ऐसे आइडियाज की बात हो रही है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर और स्मार्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए फ्यूचर से जाकर मुलाकात आज ही कर लेते हैं. स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची 1.
6: Well, अरिजीत सिंह नेहा कक्कड़ की पावर पैक आवाज. बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. स्टूडियो टू मिर्ची, इट्स हॉट. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय करके

0: यार सच कहूं, ये दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. वैसे अगर मैं इस खूबसूरत से रिश्ते को नाम देने की कोशिश करूं तो दुनिया इसे माँ कहती है, लेकिन सही मायने में यह हमारी जिंदगी में कई रोल अदा कर जाती है। कभी वो हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, कभी टीचर, कभी चीयर लीडर, और कभी वो सुपर हीरो जो खुद शायद कभी थक भी जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी थकने नहीं देती। और इसी प्यार, इसी बॉन्ड और इसी खूबसूरत कनेक्शन को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने का मौका आ चुका है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बार फिर से सॉलिड एंट्री कर रहा है मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। Well, absolutely, you heard that right. जितनी भी सुपर मॉमीज इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वक्त आ चला है कि सुपर मॉमी यानी कि मिर्ची मॉमी का क्राउन जो है आप अपने सर पे सजाने की तैयारी कर ही लें। Well, अगर आपको लगता है कि आपको 5th एडिशन में पार्टिसिपेट करना है, इस मैग्नानिमस इवेंट का हिस्सा बनना है एंड बहुत सारी खूबसूरत यादें अपनी जिंदगी में शामिल करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से बस एक मिनट का वीडियो बनाना है अपने बच्चे के साथ। ये डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई फन वीडियो हो सकता है, यह सिर्फ एक ऐसा मोमेंट जो आप दोनों के बीच प्यार और इस खूबसूरत से रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। वीडियो बनाने के बाद फटाफट से भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896 पर। एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो में वो ताकत है जो कि हर एक माँ के अंदर जरूर होता है, तो 101% आपको ऑडिशन पर बुलाया जाएगा एंड अगर आप सिलेक्ट हुए तो ग्रैंड फिनाले पे आप पहुंच ही जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मौका जो है एक बार फिर से आपके रास्ते दस्तक दे रहा है, फटाफट से वीडियो भेजिए और इस मैदान में सुबह का हिस्सा बनने की तैयारी कर ही दीजिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bol Dal, Bollywood Bol Dal,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: Khat khat,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1,
7: Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. 89.6.
2: It's hot.
3: Mirchi ghadi mein is waqt baj rahe hain 9. Sunte rahiye 89.6. Mirchi One, it's hot.
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

पर देखो एक बात तो तय कि गुल्लक के खनकने की आवाज एक बार फिर से आ जा ही जाएगी। Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. It's hot. Having said that, जिस तरह IP money में इस वक्त अच्छे एक्सचेंज रेट्स की खनकने की आवाज आ रही, आज सैलरी वाले दिन में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में खुशियों के खनकने की आवाज जो है वो जरूर आएगी। वैसे इतना बता दूं, सैलरी आ चुकी है एंड अगर आज आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.06, पाकिस्तानी रुपीज 76.78, बांग्लादेशी टाका 33.68 एंड हीरो के तौर पर इस वक्त अगर कोई चमक रहा है तो वह है श्रीलंकन रुपीज विद 90.41 एंड साथ ही नेपाली रुपीज 41.91। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. La fie bala burga. Mirci, burga.
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए।
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए

0: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
1: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
1: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
1: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
1: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
1: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
1: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
1: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
3: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
3: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे, बता रहा हूँ आपको।
3: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100-0813।
7: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पता है क्या, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हर सवाल का जवाब ये एक शख्स कैसे हो सकता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Morning Sun. This is Ajay Anshu with you. माँ, बस इन्हीं की बात कर रही हूं मैं, हमारे हर सवाल का जवाब। यार ये वो है जिसकी डांट में भी मिठास है, ये वो है जिसकी नाराजगी में भी प्यार है, ये वो है जो हमें गिरने से पहले ही संभाल लेती है, और ये वो है जो हर मुश्किल में सबसे पहले हमें हाथ देती है। हमारे हर सवाल का जवाब, हमारी हर दुआ का आकार, और एक बच्चे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत किताब। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर माँ को सेलिब्रेट ना किया तो फिर क्या ही किया। एंड इसका मौका इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में कोई लेकर आया है तो वो है मिर्ची वन कतर विथ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। वेल एब्सोल्युटली हर्ड दैट राइट, इसका आगाज जो है हो चुका है, बहुत जल्द ऑडिशंस आपकी जिंदगी में शामिल होने वाले हैं। डेट जो है जरा सी एक्सटेंड की गई है, तो अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 का हिस्सा बनना है तो फटाफट से एक ही काम करना है, जल्दी से एक वीडियो बनाना है अपने बच्चे के साथ, एक ऐसा वीडियो जो डिपिक करेगा आपका एक खूबसूरत सा बॉन्ड जो आप अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं, एंड भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896 5000 1896। जल्दी से जल्दी भेजें क्योंकि ऑडिशंस की तारीख जो है बेहद करीब आ चुकी है, एंड इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए तो ना ही सिर्फ ग्रैंड फिनाले में आप पहुंच जाएंगे, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सुपर मॉमी मिर्ची मॉमी का ताज जो है इस वक्त आपके सर पे सज ही जाए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर एंट्रीज। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center. Zuba.

0: मेरी जिंदगी में तो वेकेशन मोड कहीं ना कहीं ऑन हो चुका है, आपके क्या हाल है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, June का महीना आते ही ना कहीं एक अलग फीलिंग हमारी जिंदगी में आने ही लगती है. नहीं, वैसे देखा जाए तो ये कैलेंडर में सिर्फ शायद एक नया महीना हो, लेकिन हर एक पेरेंट कतर में रहने वाला ये जरूर जानता है कि हमारी जिंदगी में इस वक्त अगर कोई सिलसिला शुरू होता है तो वो है काउंट डाउन का, एंड दैट टू ऑफ समर वेकेशंस. क्योंकि बात इतनी है, बच्चों की छुट्टियों का ऐलान जो है बहुत जल्द होने वाला है, एंड इन दिनों जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हमारी छुट्टियां होती हैं. ना पहले छुट्टियों पे ना हमारा एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन एक बार जो आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो बस छुट्टियां जो हैं उनकी हो गई. अब आप जो है वेकेशन प्लान नहीं करते, वेकेशंस जो है आपको प्लान किया करते हैं. तो वेल, जून इकलौता ऐसा महीना बचा है जो पढ़ाई लिखाई जो है इस सीजन के लिए जोर शोर से होने वाली है, एंड इसके बाद अगर जिंदगी में कुछ आएंगे तो वो है समर वेकेशंस. जितना मुझे पता है 2nd of July is going to be the last official school day for your kids. तो बढ़िया है, वेकेशन प्लान करना शुरू कर दें. और एक बात तो बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप इन बार छुट्टियों में अपने घर जाएंगे तो घर की मिठाई जो है अंशु के लिए जरूर लेकर आएं. स्टूडियो टू मची बंदी का राम अंशु, एंजॉय.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा.
3: बहुत कुछ होगा.
0: Qatar का number one radio station.
4: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: It's hot.
1: टूटा पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: यार सुनो ना, नए चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा इस चैप्टर का सही तरह से रिवीजन तो कर ले।
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. And जरा देखें, साथ चलते चलते finally इस chapter के आखिरी पन्ने पे हम पहुंच ही गए. While I'm talking about 31st of May, इस खूबसूरत से chapter का ये आखिरी पन्ना. यार पता ही नहीं चला कि कब ये महीना शुरू हुआ एंड कब इतनी सारी यादें, इतने सारे लम्हे और इतनी सारी कहानियाँ देकर अलविदा कहने भी आ गया. लेकिन पता है क्या, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात तो बस यही है कि हर एंडिंग अपने साथ एक नई बिगनिंग लेकर आती है. लेकिन इससे पहले कि हम नई शुरुआत करें, क्यों ना इस खूबसूरत से महीने की उन सारी खूबसूरत यादों को एक बार फिर से दोहरा लिया जाए. वो कहते हैं ना, जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा हो तो उसे महसूस करना बार बार ना भूले, यू नो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, उन लम्हों को अपनी यादों में ही सही लेकिन दोबारा फिर से जीना. क्योंकि अच्छा सोचने से अच्छी चीज़ें हमारे तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं. तो बस अंशु के बारे में ना जरूर सोचते रहना. और चलिए एक बार फिर से आज के दिन को बहुत ही ज्यादा खास एंड स्पेशल बनाते हैं. इससे पहले कि हम नया चैप्टर शुरू करें, क्यों ना आज के दिन को फिर से दिल से मिलकर जी लें. क्या कहती पब्लिक, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस कि आज जो है आप क्या कुछ खास करने वाले हैं एंड अगले नए चैप्टर के लिए क्या कुछ आपने खास प्लान किया है. 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरह मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू कदर नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. It's hot. Bindi ka naam Anshu. Enjoy.
3: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे बैंड को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
5: खटखट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10, आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो नाम मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा,

0: सारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: आई एम जेन्युइनली कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस वन।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और अगर आपकी यादें किसी चीज को लेकर एक स्पेसिफिक तरीके से बनी हुई है, इनफैक्ट वो बहुत ही खूबसूरत सी यादें हैं, और उस चीज को लेकर कुछ नया किया जाए तो आपको दिमाग में रहता है ना कि यार बस मेरी उन यादों के साथ छेड़छाड़ मत करना, मतलब जो नॉस्टैल्जिया है उसको मेरे लिए खराब मत करना। चलो कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइकॉनिक टीवी सीरीज ऑफिस। ऑफिस याद तो होगा आपको, पंकज कपूर स्टार है जिसमें वो मुसद्दी लाल बनते हैं और वो ड्रामा। ओ हो हो हो हो। सो बेसिकली इस सीरीज का सीजन 2 आ रहा है। यस यू हर्ड इट राइट, जिसमें लीड रोल निभाने वाली हैं रिनाउंड टीवी स्टार श्रुति शर्मा। अब चलिए इनके पहले के काम भी आपको याद दिला दूं, गठबंधन, नजर 2, नमक इश्क का, मिट्टी, इनफैक्ट हीरा मंडी में भी नजर आई है मोहतरमा। तो ये ऑफिस ऑफिस का सीजन 2 आने की वजह से हम टीवी बफ्स के लिए, इनफैक्ट 90s किड्स के लिए एक वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया तो है, बट साथ में एक डर भी है कि हमारे उस नॉस्टैल्जिया को खराब ना किया जाए विद दिस न्यू वर्जन। एंड दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Milchi, burga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, तो आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस?

0: पार्लियामेंट वो
1: आगे आगे वो भी आगे आगे वो भी आगे आगे एक मिनट होल्ड करिए आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
0: फोन तो घर पे है लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
1: आगे वो भी आगे दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ,
0: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
1: किसकी डेथ हो गई सर?
0: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
1: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो, आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
0: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसा हो गया रात, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
1: मैं कहाँ रहा हूँ?
0: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
1: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
0: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई, क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
1: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
0: यार।
1: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी, ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

2017 जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई इस फिल्म के टीजर नहीं, स्ट्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th ऑफ जून इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या ओटीटी, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी टीवी पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st ऑफ मई। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 20

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस ले।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जिंदगी ने आपके साथ इतने सारे गेम खेले, अब आप जरा जिंदगी के साथ फन वाला गेम खेल लो यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची ऑफ द डे। सो जो लोग मेरे शो को सुनते हैं, दे ऑलरेडी नो कि आप मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजते हैं और मैं आपको कॉल करके ये बॉलीवुड गेम की शुरुआत करती हूँ। देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिनके जवाब देने पे आपको ये मिर्ची फिल्मची का टैग मिलता है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं दीपक जी। कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप मिर्ची फिल्मची बनने के लिए तैयार हैं आज?
3: कोशिश करते हैं।
0: क्या बात है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है?
3: स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू।
0: क्या बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में लोग रो यानी कि रोहन किसको बोलते हैं?
3: टाइगर श्रॉफ होगा।
0: टाइगर श्रॉफ की किस फिल्म में विसल बजा गाना है?
3: पहली वाली हीरोपंती।
0: हीरोपंती की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: कृति सैनन।
0: कृति सैनन का डबल रोल किस फिल्म में है?
3: डबल रोल ये काजोल के साथ आई थी।
0: हाँ, सही जा रहे हैं।
3: तीन पत्ती था क्या था?
0: तीन पत्ती तो नहीं था, लेकिन पत्ती से ही रिलेटेड था।
3: दो पत्ती।
0: हाँ, चलिए, दो पत्ती में पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनती है?
3: पुलिस इंस्पेक्टर काजोल।
0: हाँ, काजोल और शाहरुख खान किस फिल्म में बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं?
3: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है में टीना का रोल किसने प्ले किया है?
3: रानी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें कार रेस होती है?
3: कार रेस होती है तारा रमपम।
0: हाँ, तारा रमपम के मेल लीड का नाम क्या है?
3: सैफ।
0: सैफ अली खान लंगड़ा त्यागी किस फिल्म में बनते हैं?
3: ओमकारा।
0: ओमकारा में नमक इश्क का सॉन्ग किस पे पिक्चराइज है?
3: किस पे पिक्चराइज है?
0: हाँ जी,
3: बिपाशा।
0: बिपाशा बासु की फिल्म जिसमें ऐश्वर्या राय भी है? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा जो गेम अभी तक खेला है आपने, उसके लिए ये टैग तो बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो ब्रो, आज के शो पे फर्स्ट मिर्ची फिल्मची तो दीपक जी हैं, लेकिन दीपक जी के आगे ये गेम कौन कंटिन्यू करेगा वो तो वक्त बताएगा। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके बस आपको अपना नंबर भेजना है, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
5: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
4: खट खट हो दैट।
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? नाटी नाटी मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, एंड यस इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिल्म ची। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन आई आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। अगर जवाब सही सही हुए तो आपको डेफिनेटली ये टैग मिल जाता है। तो सबसे पहले आज ये गेम हमारे साथ खेला है दीपक जी ने, बट वो एक पॉइंट पे अटक गए थे। बट आगे अब हमारे साथ गेम कम्प्लीट करने के लिए देयर इज दिस पर्सन। किससे बात हो रही है?
3: सौरभ से।
0: सौरभ जी कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया।
0: तो क्या आप ये गेम आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ?
3: कोशिश कर सकते हैं।
0: तो फिर सवाल यही है कि बिपाशा बासु की किस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी हैं उनके साथ?
3: धूम टू
0: में एसीपी कौन बनता है?
3: एसीपी वुड बी अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई का रोल किस फिल्म में किया है?
3: गुरु।
0: ग्रेट। गुरु की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या इश्क किस फिल्म में करती है?
3: देवदास
0: फिल्म में चंद्रमुखी का रोल किसने किया है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा वाला सॉन्ग किस मूवी में है?
3: ये जवानी है दीवानी
0: में नैना का रोल किसने किया है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका की मूवी जिसमें उन्हें लहू मुलग गया।
3: लहू तो लग गया, दैट वाज गोलियों की रामलीला।
0: रामलीला में मेल लीड रोल किसने किया है?
3: रणवीर सिंह
0: की एक मूवी जिसमें वो सारी लड़कियों को कॉन करते हैं।
3: लेडीज वर्सेज रिकी बेल
0: में रणवीर सिंह को कौन करता है?
3: अनुष्का शर्मा
0: को कैंसर किस फिल्म में होता है?
3: ए दिल है मुश्किल
0: में शायरा कौन होती हैं?
3: ऐश्वर्या राय।
0: क्या बात है, तो इसी बात पे आपको भी ये टैग दे ही देते हैं यार।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: भाई लोगों के अंदर के फिल्मची को ढूंढना अल्टीमेट लेवल का मजा दे रहा है मुझे, तो आपको कैसा लग रहा है वो मुझे जरूर बताना मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सबकी कहानियाँ एक अलग ही टच के साथ आती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाए, मैं हमारे हिंदी सिनेमा के कुछ फीमेल स्टोरी टेलर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनके जो ट्रेडमार्क्स है ना, दे स्टैंड आउट इन ऑल द क्लटर दैट वी हैव इन इंडियन सिनेमा। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फीमेल स्टोरी टेलर्स की बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अन्विता दत्त गुप्तन। भाई मोहतरमा एक्सप्लोर करती हैं द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड एलाइज। सो एलाइज वो इंसान होता है जो आपकी मदद करने, आपकी सपोर्ट में खड़ा होता है व्हेन नोबडी इज बाय योर साइड। एंड इनकी दो फिल्में बुलबुल और कला ऐसे ही एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करती हैं। इनकी कहानियां एक औरत के ट्रॉमास की बात करती हैं, बेसिकली जो इनके कैरेक्टर्स इनहेरिट करती हैं फ्रॉम देयर फैमिलीज। अगर हम बात करें इनकी दोनों फिल्में कला एंड बुलबुल की, देन दे डील विद पेट्रियार्की एंड रिवील करते हैं कि एक मैंस वर्ल्ड में औरत होना टेक्स मोर देन जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। इन मोहतरमा की फिल्में नहीं देखी हैं तो अपने वॉच लिस्ट में जरूर से जरूर ऐड करना। बाकी और भी चार ऐसे ही फीमेल स्टोरी टेलर्स की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirchi.
1: Piscabana, puscabana, sacabana.
2: Gambana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानूँ, उसे बनवाया था, उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटा।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हर इंसान का अपना एक ट्रेडमार्क होना चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जैसे मेरा ट्रेडमार्क है फिल्में, क्योंकि ये लड़की बड़ी फिल्मी है यार। सो आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही ट्रेडमार्क्स की बात कर रही हूँ, बट स्पेसिफिकली ऑफ आर फीमेल स्टोरी टेलर्स। उन्होंने किस तरीके से अपनी कहानियां बयां की हैं, उसकी चर्चा हो रही है। सो इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी टेलर अन्विता दत्त गुप्तन। अब नंबर दो पे बात करते हैं इंग्लिश विंग्लिश एंड डियर जिंदगी फेम स्टोरी टेलर गौरी शिंदे। सो इनका बेसिक ट्रेट है फाइंडिंग पर्सनल विक्ट्रीज। इनकी कहानियां सिंपल लोगों पे फोकस करती हैं जो रिलेटेबल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड इवेंचुअली ओवरकम देम। इनके नैरेटिव का कोर होता है हार्ट ब्रेक, होम मेकर्स एंड द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ। अब डियर जिंदगी की प्रोटैगनिस्ट कायरा हो या फिर इंग्लिश विंग्लिश से शशि का कैरेक्टर, ये ग्रैंड हर्डल्स ओवरकम नहीं करते, जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत लिया या कुछ। Instead, they battle for their own identity. Moving on, लिस्ट में नंबर तीन पे बात करना चाहूंगी सोनाली बोस के बारे में, जिनका ट्रेडमार्क है पोर्ट्रेट्स ऑफ फ्रीडम। अब इनकी मूवीज ही देख लो, मार्गरेट विद अ स्ट्रॉ, द स्काई इज पिंक, अमू। अपने फिल्मों के डाइवर्स लेंस से ये मोहतरमा फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे करती हैं। अब उनकी फिल्म रात की रानी की ही बात कर लें, उसमें शी एक्सप्लोर्स द पर्सनल विक्ट्री ऑफ अ वुमन नेविगेटिंग लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड्स डिपार्चर। वहीं द स्काई इज पिंक में वो सेलिब्रेट करती हैं द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ अ मदर, अ वाइफ एंड एन इंडिविजुअल अमिडस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वेल, ऐसी ही दो और फीमेल स्टोरी टेलर्स की बातें बाकी हैं इन माय लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: पहचान है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय। मैं अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फीमेल स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी पहचान की बात कर रही हूँ, उनकी कहानियों का जो ट्रेडमार्क है उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट अन्विता दत्त गुप्तन, नंबर दो पे हमने बात की गौरी शिंदे के बारे में, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट सोनाली बोस, अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट जोया अख्तर। भाई इनका ट्रेडमार्क है अर्बन मॉडर्न वुमनहुड। जिस तरीके से जोया फीमेल कैरेक्टर्स को समझती है, दैट मेक्स हर स्टोरीज रिलेटेबल। वो मेड इन हेवन से तारा हो जो गोल्ड डिगर के स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, एंड बाय द एंड यू फाइंड योरसेल्फ रूटिंग फॉर हर, राइट? या फिर दिल धड़कने दो से आयशा का कैरेक्टर हो दैट हाइलाइट्स कि रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास उनको भी जेंडर बायस फेस करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग, राइट? चलो मूविंग ऑन, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कोंकणा सेन शर्मा। भाई ये महिला जिस लेवल की एक्ट्रेस है उसी लेवल की स्टोरी टेलर भी। सो बेसिकली इनकी कहानियां फीमेल डिजायर्स, मेंटल हेल्थ और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। अब वो दो औरतों के अनस्पोकन डिजायर की बात हो फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस इन द शॉर्ट फिल्म मिरर, या फिर वो आदमी जिसको बटरफ्लाइज और किताबें पढ़ना पसंद हो इन द फिल्म डेथ ऑफ द गूंज। She brings out human emotions with remarkable nuances. And that is the reason, my friend, I just love her. Well, meri is list mein agar aap bhi kuch female writers ka naam add karna chaho, then feel free to do that. Connect with me on my Facebook and Instagram. I'm there with the name MIRCHISHRUTI. That is Mirchi Shruti. Meanwhile, stay tuned to Mirchi. It's hot. Yeah, see.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bordal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal,
1: only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Jassi.
5: Jassi? Kaun si wali Jassi?
4: Jassi who has come, aunty ji?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th of June इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: सच कह रही हूँ, इस बार की ईद की छुट्टियों ने ना कहीं नानी घर हमें याद दिला ही दिया।
1: मिर्ची अंशु।
0: अगर इस बार की ईद की छुट्टियों की बात करूं तो भाई क्या गजब मजे के हमने, सच कह रही हूँ यार। मतलब हर दिन एक अलग एक्सपीरियंस, आज एक दोस्त क्या, कल किसी और, फिर किसी और। हर किसी के घर का अलग खाने का टेस्ट, अलग गेम्स, अलग मस्तियाँ। मतलब वो बचपन के दिनों में नानी घर जाने का जो एक्सपीरियंस होता था ना कि भाई आज नानी घर गए, कल छोटी नानी के यहाँ जाना है, फिर किसी और के यहाँ जाना है, क्या मजे हम क्या करते थे। वही गर्मी का मौसम, वही आम का पन्ना, वही आम का रस, ढेर सारा खाना एंड साथ में ये फेस्टिव वाइब, मजा आ गया यार। लेकिन मौसम ने भी कहीं कोई कसर ना छोड़ी।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: सूरज चाचू ने बस यही कहा कि बेटा तुम जो है अपने घर पे ईद मना रहे हो, जरा बाहर आके देखो, मैं भी जो है अच्छी सूरज की किरणों के जरिए तुम्हारी जिंदगी में ईदी जो है ना लेके आ रहा हूँ। पर गर्मी जो है बेमिसाल है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ, सर इज गोइंग टू बी अराउंड 44, 47, 48 से कम का फील नहीं है यार। लेकिन इसके साथ ही मिनिमम इज अराउंड 33, 34। तो भैया अब मोटी रजाइयों को पैक कर ऊपर बांधने की तैयारी शुरू करें एंड वो जो समर शेड्स होते हैं ना उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। बाकी कलेजें दिमाग के ठंडक के लिए सुनते रहे कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vida para la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
3: हाँ।
4: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल।
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ।

0: दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
0: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
0: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
0: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
0: थैंक यू सर। सर आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
0: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
0: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
0: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
0: हाय हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर इतना गुस्सा मत होइए
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
3: नहीं सर मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पटाक
5: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 89.6 89.6 FM मिर्ची वन, It's hot.

0: यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मिर्ची बिटी उंडन हूँ आप, और एक सच्चा फिल्मची अभी थोड़ा सा तो ऑफेंड हो ही गया होगा कि ये क्या बोल रही है श्रुति यार, मतलब अब हम हॉलीवुड से सीखेंगे। हाँ भाई, सीखना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्टेंट वाइज ही नहीं बट एक्चुअली प्रोफेशनैलिटी वाइज भी हमें सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरीके से रणवीर सिंह का डॉन 3 फॉल आउट चल रहा है, जिसके बाद से इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ, उनको बॉयकॉट करने की बात हो गई एंड वॉट नॉट, तो उससे ना मेरे दिमाग में आता है कि इट्स हाई टाइम कि बॉलीवुड हॉलीवुड के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत करे। मतलब ये जो होता है ना कि अच्छा ये एक्टर है, हमें इसको अपनी अगली फिल्म में लेना है, एंड बस वो हैंडशेक वाली डील हो जाती है दो लोगों के बीच में, उसके बाद फिर कोई बात पलटी भी तो आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकते हैं किसी के खिलाफ। सो दैट इज द रीजन आई थिंक आई बिलीव दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज है कि भाई अगर आपको मेरे इस फिल्म में काम करना है तो लेट्स साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होना हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज वाई आई सेड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान,
0: खान। मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको रुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: पत्र लेखा और उनके हस्बैंड राजकुमार राव की फर्स्ट थिएट्रिकल प्रोडक्शन
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपकमिंग फिल्म जिसका नाम अब बदल दिया गया है। सो इस मूवी में पत्र लेखा खुद नजर आने वाली हैं अलोंग विद मानवी गागरू जिसका नाम पहले रखा गया था हीर सारा एंड पॉन्डिचेरी बट अब उसको बदल के सिर्फ हीर सारा रखा गया है। इनफैक्ट ये मूवी पहले 29th ऑफ मे को रिलीज होने वाली थी बट नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन टू 12th ऑफ जून। माइंड यू इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कार्तिक चौधरी एंड ये एक रोड ट्रिप की कहानी होने वाली है विच इज गोइंग टू ट्रेस एन इमोशनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ टू वुमेन और इस दौरान उनके पर्सनल स्ट्रगल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशनल हीलिंग पे भी फोकस रखा गया है। यार आई एम अ गर्ल्स गर्ल और हमारी इंडस्ट्री की तरफ से अगर गर्ल पावर वाली कोई फिल्म आती है या फिर सिर्फ फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स वाली मूवी आती है तो मुझे स्पेसिफिकली अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है एंड आई एम डेफिनेटली गोना वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
2: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Zaheer.
5: Zaheer. Zaheer who?
4: Zaheer si baat hai. Main hi hu. Aur koi nahi.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: और देखो एक बात तो तय
1: कि गुल्लक के खनकने की आवाज एक बार फिर से आ जा ही जाएगी।
0: Hey, welcome back. You're listening to Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. It's hot. Having said that, जिस तरह IP money में इस वक्त अच्छे exchange rates की खनकने की आवाज आ रही, आज सैलरी वाले दिन में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में खुशियों की खनकने की आवाज जो है वो जरूर आएगी। वैसे इतना बता दूं, सैलरी आ चुकी है एंड अगर आज आप ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.06, पाकिस्तानी रुपीज 76.78, बांग्लादेशी टाका 33.68 एंड हीरो के तौर पर इस वक्त अगर कोई चमक रहा है तो वह है श्रीलंकन रुपीज विद 90.41 एंड साथ ही नेपाली रुपीज 41.91। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: खाने।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: देखकर रात तो दिल खुशी हो गया। रात में सोने से पहले मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखी, मैंने देखी द मूवी प्रिटी वुमन।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का फिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और देखो, पता है, सोने से पहले जो कुछ आप पढ़ के या देख के या सोच के सोते हो ना, वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके के ख्वाब आएंगे और आपकी अगली सुबह जो है वो किस मूड के साथ शुरू होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ का कि रात में सोने से पहले हमने क्या सोचा, हमने अपना दिमाग कहाँ लगाया। सो मैंने सोचा कि यार, मतलब अभी क्या हो रहा है कि ना हम फोन के अंदर इतना ज्यादा घुसे हुए हैं कि मैंने कहा फोन को साइड में रखते हैं और अब ऐसी मूवी देखते हैं जिससे कि भले मैंने मूवी पता नहीं कितनी बार देखी हुई है, लेकिन स्टिल आई वॉन्टेड टू डाइवर्ट माई माइंड एंड आई पिक्ड अप द मूवी प्रिटी वुमन एंड आई वॉच दिस फिल्म बिकॉज मुझे जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गियर की ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है और ये जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। एंड बाय द वे, ये जो फिल्म है ना, इसका एक सीन है, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो देखना जरूर, और अगर देखी है तो आपको ये सीन शायद याद होगा जब रिचर्ड गियर जूलिया रॉबर्ट्स के सामने एक ज्वेलरी बॉक्स रखते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स जो है शी रीचेस आउट फॉर द पीस ऑफ ज्वेलरी और एकदम से वो बॉक्स बंद कर देते हैं। तो यू नो, वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचती है एंड शी इज अ बिट स्टार्टल्ड एंड वो एकदम से ना, मतलब शी ब्रेक्स इनटू अ लाफ्टर और वो लाफ्टर उनकी बड़ी ऑर्गेनिक लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एंड दैट सीन वॉज एक्चुअली अ सीन जो कि डायरेक्टर ने प्लान किया था एज अ प्रैंक ऑन जूलिया रॉबर्ट्स, बिकॉज जूलिया रॉबर्ट्स जो कि एट दैट टाइम वॉज वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, वो अक्सर सेट्स पर ना बड़ी स्लीपी हुआ करती थी, उनको हमेशा ही नींद आ रही होती थी। तो उनकी नींद भगाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार ये प्रैंक करते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स को एकदम से ना चौंका देते हैं, तो उनकी नींद वींद जो है ना वो भाग जाएगी। और वो सीन जैसा शूट हुआ वैसा ही रखा गया सो दैट वो ऑर्गेनिक भी लगे और ऑफकोर्स उस सीन के साथ एक याद जुड़ी रहे जो आज इतने सालों बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नहीं, अब जब अच्छी जोड़ियों की बात की जा रही है तो हॉलीवुड से बॉलीवुड पे आते हैं यार, अपना एरिया है। और बॉलीवुड की 90s और अर्ली 2000 की कुछ फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियां हैं जो हम सबके दिल को छू गई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे यही सारी बातें करने वाली हूँ। अभी के लिए तो फिलहाल मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. Na virtuala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
2: हैं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
1: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं, मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब?
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे,
3: आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: नहीं, बसंती।

0: दोस्ती के नाम पर अगर कभी मैं दुआ देती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि दोस्ती हो तो काजोल और शाहरुख जैसी, जो कि ऑन स्क्रीन तो दिखाई देती देती है लेकिन ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा तगड़ी है, तभी तो ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी केमिस्ट्री निकल कर आती है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड शाहरुख खान एंड काजोल की जोड़ी, ओ हो हो हो हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक भी इस जोड़ी को हम मिलेनियल्स नहीं भूल पाए। ये जोड़ी तो इनफैक्ट बेंचमार्क बन गई है यार बॉलीवुड की जोड़ियों के बीच में, कि यार ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा स्पार्क, इतना फन हमें बहुत कम नजर आ रहा है तब से लेकर अब तक, नहीं क्या? एंड यू नो वॉट, इन दोनों ने DDLJ में तो काम किया ही किया, वहां से तो ऑफकोर्स इस जोड़ी का और हो गया, लेकिन बाजीगर में सबसे पहले इन दोनों ने काम किया था। एंड बाजीगर का एक किस्सा है ऑफ द स्क्रीन ऑफ कोर्स, कि हुआ ये था कि जो शूट था वो 1 जनवरी को शुरू हुआ था, एंड 31 की रात को सब पार्टी करके, यू नो, विद अ हैवी हेड, क्योंकि कोई सोया था कोई नहीं सोया था। जब सेट पर पहुंचे तो ऑफ कोर्स एक रात पहले तो उन्होंने बहुत ही भारी भरकम पार्टी की हुई थी, एंड ही वॉज वेरी स्लीपी एट दैट टाइम। ऑन द कॉन्ट्ररी काजोल, वो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ बातें करती चली जा रही थी, जो उनको मिल रहा था उससे बात करती चली जा रही थी, पर शाहरुख खान वाज वेरी साइलेंट, क्योंकि उनका ना सर भारी हो रहा था, उन्हें नींद आ रही थी, तो ही वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि वो ना चैटर बॉक्स बने उस टाइम पर। काजोल को लगा कि ये तो अलग ही निकल के आया बंदा, इसके तो एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहे हैं। वो तो लेटर ऑन इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो सेट हुई, बात हुई, तो पता लगा कि नहीं भाई, बंदा इतना एटीट्यूड वाला है नहीं। ऐसे ऐसा हुआ था कि 31 की रात को जब बंदे ने पार्टी करी है तो 1 की सुबह वो कैसे चर्पी हो सकता है, बस फिर क्या, उसके बाद से लेकर आज तक तो ऊपर वाले के करम से इनकी दोस्ती की गाड़ी को ब्रेक नहीं लगे। टच वुड इनकी जोड़ी ऊपर वाला सलामत रखे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: दोस्ती का गुस्सा है मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: शाहरुख एंड माधुरी की जोड़ी या फिर सलमान खान और माधुरी की जोड़ी? आई थिंक आई लाइक्ड सलमान एंड माधुरी की जोड़ी मोर ऑन स्क्रीन देन शाहरुख खान एंड माधुरी की जोड़ी, नहीं क्या?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये ना मेरे लिए भी बचपन में टफ हो जाया करता था कि मुझे कौन सी वाली जोड़ी ज्यादा पसंद आती है। और आज मिडे मोहब्बत की गाड़ी को हम 90s के गियर में डालते हुए 90s और अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट और फेमस जोड़ियों के बारे में बात करें, जिनमें से एक है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी। एंड वेल, ये काफी हिट जोड़ी थी ऑफकोर्स। इन लोगों ने हम आपके हैं कौन साथ में करी, साजन करी, एंड ये दोनों ही मूवीज बड़ी हिट थी। इनफैक्ट जब हम आपके हैं कौन के लिए कास्टिंग हो रही थी एंड एट दैट टाइम सलमान और माधुरी जब ऑन स्क्रीन नजर आए तो काफी सारे लोगों ने एक पॉइंट छेड़ा था कि माधुरी दीक्षित सलमान खान से ज्यादा बड़ी लग रही है ऑन स्क्रीन। बट कुछ भी कहो, हमें तो जोड़ी पसंद आई थी और उसके बाद तो इन लोगों ने और भी फिल्में साथ में करी थी। इनफैक्ट इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी काफी अच्छी चली थी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब ये लोग हम आपके कौन के लिए शूटिंग किया करते थे तो माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान बहुत मस्करी करते हैं ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी, और उससे होता ये था कि सभी का मूड एकदम हल्का बना रहता था और शूट करने में मजा भी बहुत आता था। यार, ऐसे कलीग्स होना जो वक्त के साथ दोस्त बन जाए तो फिर बात ही क्या है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
2: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
5: खट खट, हु दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: चोरी चोरी चुपके चुपके करने के बाद प्रीति जिंटा और सलमान खान के बीच में बहुत बड़ा टसल हो गया था, जिससे कि जाने मन की शूटिंग रुक गई थी। भाई
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड हुआ ये था कि जब सलमान खान और प्रीति जिंटा ने चोरी चोरी चुपके चुपके के लिए शूट किया था, और फिर ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म जो है ये अंडरवर्ल्ड ने फंड करी है एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स उस जमाने में बात ऐसी थी कि सबके फोन्स भी टैप किए जाने लगे थे। काफी सारे टेप्स तो हमने भी सुने बड़ी इंटरेस्टिंगली, एंड वो जो टेप्स थे उनमें से एक सलमान खान का भी था, जिसमें कि वो कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बुरा भला कह रहे थे, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने प्रीति जिंटा के बारे में भी कुछ कह दिया था, जिससे प्रीति जो थी वो बड़ी नाराज हुई। एंड एट दैट टाइम सलमान और प्रीति जाने मन मूवी के लिए शूट कर रहे थे, तो प्रीति जिंटा ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं सलमान के साथ शूट नहीं करूंगी। अब इससे पहले कि कोई बोलता पेंसिल और हो जाती ये फिल्म कैंसिल, जैसे तैसे करके इन दोनों के विवादों को किसी तरीके से सुलटाया गया, इन्हें बिठाया गया, बात करवाया गया, क्लैरिटी मिली, एंड देन उसके बाद प्रीति वॉज टोटली फाइन एंड शी बिगैन वर्किंग विद सलमान खान अगेन फॉर द फिल्म जाने मन। उफ़ माय गॉड, बड़े होते होते कितनी सारी चीजें बदल जाती है ना यार। क्योंकि बचपन में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, तो हम तो बस इतना कहते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, और सारे के सारे जो है वो याद भी कर लिया करते थे और माफ भी कर दिया करते थे। बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता है बॉस, काफी उलझने हो जाती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है
4: अंदर।
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को

0: रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकता है, किसकी जिप्सी?
0: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
0: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
0: आ गए वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
0: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पा रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
0: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
0: रुकिए, आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
0: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
0: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
0: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
0: थैंक यू
1: कुकुड़
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
3: हाउ इज द जोश?
4: हाय सर,
3: हाउ इज द जोश?
4: हाय सर।
2: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
2: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज ही मैंने ऑफिस में नरसी भैया से पूछा अपना सैलेड खाने के बाद वो जो डब्बा था उसके लिए कि नरसी भैया आप लोग इन डब्बों को धो धो के रखते हो क्या? क्या करूं, मेरे अंदर का मिडिल क्लास इंसान तो कहीं जाने नहीं वाला। नरसी भैया ने बोला कि नहीं मैडम, तो मैंने वो डब्बा फेंक दिया। लेकिन 90s में ऐसा नहीं हुआ करता था भाई, इतना सुंदर डब्बा कोई वेस्ट नहीं करता था।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड स्पेशली वो टिन के डब्बे जिनमें की बटरी सी खुशबू आती थी काफी दिनों तक, क्योंकि उनके अंदर आती थी बटर कुकीज। वो कुकीज तो हम खा लिया करते थे फटाक से झटाक करके, लेकिन वो डब्बे जो थे वो रह जाया करते थे। उनको मजाल है कि किसी ने हाथ लगा के डस्टबिन में फेंक दिया हो ही नहीं सकता था। वो डब्बे तो इस घर में इसीलिए आया करते थे ताकि फिर उनके अंदर सुई धागे के किट रखे जाए। एंड इवेंचुअली होता भी वही था। अब तो मुझे बड़ी याद आती है यार उन किट्स की, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार आजकल तो बड़े फैंसी फैंसी से किट्स आने लग गए। डिपार्टमेंट स्टोर पर फैंसी फैंसी स्टोर्स होते हैं, उनमें फैंसी फैंसी स्विंग किट्स होते हैं, लेकिन हमारे बचपन के टाइम में तो ये टिन के डब्बे हुआ करते थे जिनके अंदर हमारी नानी दादी फिर मम्मियां मासी उन्होंने सारे के सारे अपने ये जो सिलने के खजाने होते थे वो रखे हुए होते थे। अलमारी खुलती थी और सारे तय किए हुए कपड़ों के ऊपर रखा हुआ होता था वो टिन का डब्बा भी। और बड़ा खूबसूरत लगता था यार ये टिन का डब्बा, बाहर से टिन का होता था, उसके ऊपर जो भी डेंटिंग पेंटिंग की हुई है वो तो की हुई है, और जब ये डब्बा खुलता था तो अंदर रंग बिरंगी दुनिया सामने आ जाया करती थी। इस टिन के डब्बे के अंदर रखे हुए उस च्यूइंग किट की जो यादें हैं वो आज भी हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजें रफू कर जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मैंने प्यार किया का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, सुकून लगता है मुझे ये गाना। लेकिन हाँ, इसी के साथ ये बात भी है कि ये अपना माल नहीं है, चोरी का माल है।
1: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, द सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज राम लक्ष्मण की जोड़ी का कॉम्पोजिशन, SP बाला सुब्रमण्यम एंड लता जी की आवाज में।

जिसे गाया स्टीवी वंडर ने था। एंड आई वंडर कि आई स्टिल लाइक द हिंदी वर्जन मोर, कॉज इस गाने के लिरिक्स ज्यादा जोर से हिट करते हैं ना यार। हाँ, बॉलीवुड के प्रति बायस तो हो गई, और वो भी 90s के बॉलीवुड के लिए, तो व्हाई नॉट। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: खट खट,
6: who there?
5: बनता
6: बनता हु?
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट, who there?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: सारा जमाना सारा का दीवाना।
0: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: There was this moment in K3G जब करीना कपूर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन तहे दिल से चाहती थी कि पू बनी पार्वती अब ये हो ही जाए, लेकिन वो इतनी डेस्परेट थी कि वो ऐसा कर जाएंगी, ये तो हमें करण ने ही बताया।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का फिटारा। And जब K3G की शूट हो रही थी, at that time, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि there was this scene, आपको और मुझे, हम दोनों को ये सीन याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब शाहरुख खान और जया बच्चन एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं, thanks to ऋतिक रोशन। And होता ये है कि दूर से काजोल इज वॉचिंग, दूर से ऋतिक रोशन इज वॉचिंग, एंड देर इज अ करीना कपूर ऑल्सो इन द फ्रेम हु इज वॉचिंग, यू नो, यहाँ माँ बेटे जो है वो इतने सालों बाद मिल रहे हैं। काजोल के इमोशन जस्टिफाइड, ऋतिक रोशन के इमोशन जस्टिफाइड, लेकिन पू, यू नो व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जब ये सीन शूट हो रहा था, एट दैट टाइम करण जौहर ने पहले ही बोल दिया था कि यू नो, मतलब बहुत ज्यादा रोना नहीं है लेकिन रोना है। और जैसे ही करण जौहर ने बोला एक्शन, तो करीना कपूर भय करके रोने लग गई, जिसपे करण जौहर को थोड़ी देर बाद बोलना पड़ा कि तुम क्यों इतना रो रही हो, वो तुम्हारा भाई नहीं लगता, वो तुम्हारे पापा नहीं लगते, तो why is it that तुम्हारा कैरेक्टर इतना रो रहा है। जिसका कमबैक जवाब करीना कपूर ने करण जौहर को ये दिया कि आई एम एन एक्टर नाउ, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज देयर वर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल, हु वर देयर इन द फ्रेम्स ऑफ कॉज। करीना को लगा कि यार मैं कब एक्टिंग करके बताऊंगी, यार इस पू के अंदर जो पार्वती है वो आखिर कब तक चुप बैठेगी, फाइनली एक दिन तो उसको निकल कर आना ही है। तो करीना ने सोचा कि आज ही शायद वो दिन है, बट नॉट रियली, आई मीन ऑफ कोर्स उसको रीशूट किया गया एंड देन थोड़े बहुत करीना के इमोशंस दिखाए गए ऑन स्क्रीन, नॉट द बाल्टी भर के रोना वाला सिनेरियो। हाँ, अब एक बात बताओ, आप अपने बॉस को अपने काम को लेकर इतना जस्टिफाई करते हो जितना करीना कपूर जस्टिफाई करने चली थी? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Discaba la puscabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
3: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
3: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
3: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
3: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
3: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
3: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
3: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
3: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
3: कैंसिल मैं क्या जानूं, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
3: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
3: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
3: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले।
3: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear social media और फोन के चुराए हुए वक्त,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारी बड़ी याद आती है यार, वो दिन जब हम बेफिक्र होकर गलियों में खेला करते थे, जब दोस्तों से मिलने के लिए घर के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जब बातचीत आंखों में देखकर होती थी और जब हंसी का शोर सिर्फ दिलों तक नहीं पूरे माहौल में गूंजता था। तब शामें छतों पर कटती थी, तारों को निहारते हुए सपने बुने जाते थे, किताबों के पन्नों की खुशबू में घंटों डूबे रहते थे और खत लिखना वो एक एहसास हुआ करता था। हर एक लफ्ज में इमोशंस जिंदा रहते थे। आज फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, पर रिश्तों में पहले जैसी गहराई नहीं है यार। दोस्त ऑनलाइन तो हैं, लेकिन पास नहीं। दिल की बातें अब स्टेटस में बदल गई हैं और खुशियों को लाइक्स और कमेंट्स में गिनने लगे हैं। मेरे प्यारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में खोए हुए वक्त, दिल आज भी तुम्हारी तलाश में ही है। काश फिर से वो दिन लौट आए जब हम सच में जिया करते थे, ना कि सिर्फ ऑनलाइन मौजूद रहते थे। तुम्हारी याद में खोई हुई इंसान, तुम्हारी सारा, जो आज भी तुम्हारी राह तकती है। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Sonu Nigam aur Shreya Ghoshal ki awaaz mein Om Shanti Om se ye gaana goosebumps de deta hai yaar.
2: Mirchi 90s cassette.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, goosebumps तो इस गाने ने दिए हैं. And I think it is because of the music जो कि विशाल शेखर ने कंपोज किया है. Because, you know, there are times जब आप इस गाने को सुन रहे होते हो और पूरे खो जाते हो उस गाने को सुनते सुनते ना, तो the music takes you to a different world. I don't know how does music has that magic to take you to a different world. But yes, it does happen. ऊपर से सोने पे सुहागा are the lyrics of this gana. Well, beautiful lyrics, I must say. And ये जो lyrics है ना इस गाने के, ये क्लियरली इस बात को दर्शाते हैं कि जब आपको कोई इंसान या कोई चीज या कोई सिचुएशन भी ले लो यार, बहुत पसंद आ रही होती है ना, बहुत ज्यादा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप उसे एक्सप्लेन कैसे करो कि ये कितना अच्छा लग रहा है या कितना खूबसूरत लग रहा है. और इस गाने में जब बंदा बंदी के लिए ये लाइन्स गा रहा है ना कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको. ओए होए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये फीलिंग मुझे कब आई है, प्यार मोहब्बत में नहीं आई है. अक्सर ऐसा होता है ना कि रात के अंधेरे में आप छत पर चढ़ जाते हो और चांद देख रहे होते हो. एंड मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि चांद को देखने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आती है बॉडी के अंदर. और एक टाइम ऐसा आता है जब आप आसमान में चांद तकते रहते हो ना, आपको वो चांद इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपका दिल कर रहा होता है कि इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और मैं इस बात को किस तरीके से बयां करूं कि चांद कितना खूबसूरत है. और तभी ये लाइंस मेरे दिमाग में भी अक्सर आई है कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कि यार तुम दिख तो रहे हो आसमान में, तुम्हें देख तो रही हूँ मैं, लेकिन तुमको पाकर भी मैं एक तरीके से तुम्हारे अंदर खो चुकी हूँ. और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किस जुबान में ये बात कहूँ, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा होता है. इनफैक्ट हर बार मैंने एक कोशिश करी है कि अपना फोन निकाला है और उस चांद की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास क्या, फोन की लेंस के पास भी वो जुबान और वो नजरें ही नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती को जिस तरीके से वो आसमान में नजर आ रहा होता है ना, अपने लेंस में कैप्चर कर पाए. अब बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है चांद को लेकर? इंसान को लेकर तो अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता ही होता है. तो चलो, दोनों में से जो भी आपके साथ पहले हुआ है या हुआ है, DM कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, उसका जिक्र करते हुए. और अभी फिलहाल के लिए यही गाना चलाते हुए मैं यहाँ से जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं मिल ही जाऊंगी आपको ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Arre, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi.
6: It's hot.
7: It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए 4।

0: बड़ी मुश्किल पापा, बड़ी मुश्किल। देखिए मुश्किल तो होगी ना, इतनी छुट्टियों के बाद ऑफिस जाना। मिर्ची ईशा आ चुकी है आपकी शाम को शानदार करने। जी हाँ, चाय की चुस्की के साथ मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो एंटरटेनमेंट की ताज़ा ताज़ा खबरें, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कहीं की भी। उसके अलावा हम बात करेंगे कतर में होने वाले सारे इवेंट्स और एग्जीबिशंस की, सब कुछ आपको बताऊंगी ऑन माय शो। यही पे बने रहिए, यानी कि 89.6 पे मिर्ची ईशा के साथ। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर,
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
11: 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1.

0: ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बेमतलब बनी हैं, तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। इस जीवन में बेमतलब कुछ भी नहीं है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हर एक चीज का एक नाम होता है। जैसे आप अगर टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ नर्डल। यस, एंड अगर आप अल्फाबेट्स में देखें आई और जे, जब भी आप लिखते हैं स्मॉल आई और जे तो उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, उस डॉट का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ टाइटल। और एक और आपको बता दूं तो अगर आपने कॉफ़ी पी होगी बहुत से कॉफ़ी आउटलेट्स पे, तो वहाँ पे आपको एक कप दिया जाता है, उसको एक कार्डबोर्ड के कवर के साथ, ब्राउन कवर के साथ कवर किया जाता है, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं अ ज़ार्फ। ज़ार्फ, जी हाँ। ये एक स्ट्रेंज सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, बड़ी अजीबोगरीब थी। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स ऑल।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: Only on 89.6 Mirchi 1, it's all.
1: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Murga, murga. La virtua la murga. Milci, murga.
1: Hello.
2: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
1: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे
2: हैं? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो,
2: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइनमैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: है मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्बे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खम्बे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है। दिमाग खराब,
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
1: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100813।
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ये क्या बात है आज की चांदनी में। जी हाँ, आज की चांदनी ही ऐसी है कि बस आपको नजारे आ जाएंगे। क्योंकि आज रात को दिखेगा आपको ब्लू मून। जी हाँ, ऑफकोर्स ये ब्लू नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसका नाम ब्लू मून है, एक रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ मून। एंड ऑल्सो ये एक सेकेंड फुल मून है मई महीने में। एंड इसका पीक टाइमिंग है, दैट इज 11:45 AM आपको ये कतर टाइम के अकॉर्डिंग दिखने को मिल जाएगा। एंड इसकी विजिबिलिटी है, इट्स फ्रॉम मून राइज, दैट इज 6:39 PM अंटिल जस्ट बिफोर सन राइज। और इसका बेस्ट व्यू है आज की रात। जी हाँ, आज की रात जाइए छतों पे और डेरा जमा लीजिए और देखिए खूबसूरत सा नजारा चांदनी के साथ। और मेरे साथ बने रहिए, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
2: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए गर्मियों की छुट्टियां आ रही है तो वेकेशंस को टाइमली अपना मैनेज कर लीजिए। लेकिन लेकिन लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कतर यानी कि विजिट कतर लेके आया है आपके लिए सुनहरा मौका जहां पे किड्स गो फ्री कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन में बच्चे टोटली फ्री जाएंगे, रहना खाना पीना या अम्यूजमेंट पार्क कुछ भी एड ऑन है उस होटल में तो वो टोटली फ्री रहेगा बच्चों को। आपने बस अपना बैग पैक करना है और सिर्फ एडल्ट्स का ही पे करना है एंड एंजॉय करना है ये समर वेकेशन। तो इस वेकेशन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट्स का कोई हेडेक नहीं है, इतना ज्यादा लॉन्ग जर्नी आपको ट्रिप करने की प्लान जरूरत नहीं है क्योंकि कतर एक सुनहरा मौका लाया है आपके लिए एंजॉय करने का। स्टे इन कतर एंड एंजॉय योर वेकेशन इन कतर। बाकी सुनते रहिए मुझे यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.8।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Cut, cut.
4: Who that?
3: Agarkar.
4: Agarkar who?
3: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
4: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1.
6: Mirchi,
5: it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: Time Check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private

0: अगर आप भी हैं जूदा लवर तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन खाने का नहीं, पहनने का। DECC में हो रहा है एक ऐसा मजेदार इवेंट जहां पे आपको लाइव शोज परफॉर्मेंसेस के अलावा भी आपको कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज स्नीकर। जी हाँ, अगर आप भी स्नीकर पागलपंती रखते हैं अपने दिमाग में, आपको भी स्नीकर्स इकट्ठा करने का बहुत शौक है, तो ये जगह आपके लिए है। स्नीकर कॉन इवेंट हो रहा है DECC में एंड ये आज तक ही सीमित है, आज इसका लास्ट डे है। जाइए, खूब इंजॉय करिए, क्योंकि ये 4 बजे से शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक ये रहेगा, जहाँ पे आपको मिलेगी स्नीकर की वाइड रेंज। और अगर आप भी मेरी तरह पगलू है स्नीकर के पहनने के, खाने के नहीं, तो जाइए जल्दी और इंजॉय करिए एंड स्टे विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & Salt।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM
4: मिर्ची वन, It's hot.

0: अगर आपको भी ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, नए पार्क्स को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो वेलकम, आप सही जगह आए हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची ईशा को और शाम शानदार में आपकी शाम को और शानदार करने आ चुकी हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसी हिडन प्लेस जो अभी हाल ही में खुली है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्क जो अल थुमामा में खुला है एंड इट इज अल नाफल पार्क, जहाँ पे आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, फैमिली के साथ, बच्चों के स्कूटर्स उठा के, साइकिल्स उठा के आप निकल जाइए अल थुमामा में, अल नाफल पार्क में जो नया ही नया खुला है एंड इट इज अ फैमिली फ्रेंडली पार्क, जहाँ पे आपको मिलेगा आउटडोर एरियाज जहाँ पे फिटनेस भी है एंड वॉकिंग एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, जॉगिंग एरियाज है एंड उसके अलावा आपको शेडेड ग्रीन स्पेसेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। उसके अलावा किड्स प्ले एरिया तो ऑब्वियसली हर पार्क में है कतर में, तो बस यहाँ पे भी तो हो। और आपने क्या करना है, बस अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उठा के जाना है, एंजॉय करना है, बाकी बस अपने आस पास को साफ भी रखना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनको भी सिखाइए भी साफ रखना है, पार्क को गंद नहीं मचाना है। बाकी फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम. नो सॉरी, नो थैंक यू.
2: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

देखिए मेरी अगर एनर्जी खत्म हो जाती है ना, तो मुझे चार्ज करने के लिए एक कॉफी तो लगती है। चाहे मैं दिन में जितनी बार भी थक जाऊं, मुझे कॉफी ही चाहिए उस समय, ताकि आई जस्ट रिस्टोर माय एनर्जी। बात करें एनर्जी की, तो भाई कतर एनर्जी ने भी अनाउंस कर दिए हैं फ्यूल प्राइसेस। जून के महीने के जो प्राइसेस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ, प्राइसेस कुछ इस तरीके हैं कि सुपर ग्रेड पेट्रोल जो है दैट विल बी अराउंड 2.10 कतरी रियाल पर लीटर, एंड प्रीमियम ग्रेड जो पेट्रोल है दैट विल बी प्राइस्ड एट 2 कतरी रियाल पर लीटर फॉर जून। और यही बात करें मई की, तो मई में ये अराउंड 1.90 कतरी रियाल था। ये था अनाउंसमेंट कतर एनर्जी का। बाकी आप मेरे साथ अपडेटेड रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1@7।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है। ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट
5: हुरेट
4: अकबर
5: अकबर हु।
4: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
5: खट खट हु दैट
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशकल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 स्क्वायर मीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vidva la burga. Milci, burga. हेलो
2: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
1: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख खराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
1: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
1: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
1: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
1: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
1: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
1: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा
2: लो। अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
1: साहब जी को ऐसे कैसे हो सकता है?
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
1: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछो भाई।
1: उसने ऐसा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
1: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: गलती होगी साहब जी।
2: कान पकड़,
1: पकड़ ले
2: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पगला
4: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

माँ के हाथ का खाना तो खाया होगा आपने, लेकिन माँ के हाथ की मार खाई है? ओए होए, जो माँ के हाथ की मार खाने का मजा है ना, वो खाना खाने में कहाँ यार। सच्ची में मार खाए बिना आप बड़े कैसे हो गए? नहीं हो सकते। जेंटल पेरेंटिंग आई नो कुछ होती है चीज, लेकिन जो माँ की मार होती है ना, डांट होती है, इसमें एक अलग ही वो मिठास होती है। बाकी माँ से मैं आपको बता दूँ, माँ की ममता से आपको बता दूँ कि भाई माँ के लिए हमने एक अवार्ड हर साल करती है मिर्ची, तो मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 5.0 आ चुका है। जी हाँ, आ गया है। अपनी एंट्रीज को आपने सेंड करना है 5001896 पे। एंट्रीज के लिए करना क्या है, आपको एक रील बनानी है अपने बच्चे के साथ, अपना एक बॉन्ड, जो लविंग बॉन्ड है वो क्रिएट करके वीडियो आपको सेंड कर देनी है 5001896 पे, और फिर हम आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे कि भाई आइए, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड आई नो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव यू 100% चांस कि आप लोग आएंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे और एंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो भाई बस एंट्री भेजिए अपनी और एंजॉय करिए हमारे साथ, और ऐसी ही मस्त मस्त बातें के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी मिर्ची ईशा कोहली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Hollywood, Bollywood, Bordar.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कट कट।
5: अबे कौन है?
4: उत्तपा।
5: उत्तपा कौन?
4: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

कभी अलविदा ना कहना, लेकिन कहना पड़ेगा। इस मोमेंट को ना लाइक मैं स्टॉप करना चाहती हूँ यार। क्यों हम लोग अलविदा कहते हैं किसी को? मुझे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा जो कंटाल आता है ना, या कह लो बड़ा दुखद मोमेंट लगता है ना, वो लगता है किसी को बाय करो। चाहे मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, चाहे मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझसे बाय नहीं कहा जाता। चाहे इतनी भी चार घंटे तक मेरे से बात करते रहो, लेकिन मैं आपको बाय नहीं बोलूंगी। लेकिन ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मुझे आपको बाय कहना पड़ेगा और मुझे आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। आपको मिलूंगी कल दोबारा इसी समय, और आपसे अलविदा लेने का समय तो आ गया, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे पेज को यानी कि मिर्ची वन कतर को फॉलो कीजिए, वहां पे आप अपडेटेड रहेंगे। हमारे जितने भी इवेंट्स, जो भी एग्जीबिशन, जो भी कॉन्टेस्ट हम निकालते हैं, वो सब वहां पे अपडेटेड रहता है। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मिर्ची की ईशा को, और बस हमें सुनते रहिए, यानी कि 89.6 ट्यून इन रखिए। इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है। Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइड वाले को भी बताओ एट RJ करेगा, बट जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, saka bana. Bana. Murga, murga. Nafid wala murga. Mirchi murga.
4: हेलो।
5: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
6: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहे। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
4: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
6: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
4: मीसम नाम है।
6: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
4: 1200 रुपए।
6: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
4: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
6: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
4: जी
6: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
4: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
6: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
4: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
6: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
6: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
4: सर,
7: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
4: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
7: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
4: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Ghana Indie Top 10.
0: Ghana Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
11: Number 7.

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: टी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
5: गाना इंडी टॉप 10
6: कनिका के साथ On Mirchi.
7: Number 4.

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके this week on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 3.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट
2: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
5: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
6: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
5: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
4: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
7: Khat khat.
8: Kaun hai?
7: Ishant.
8: Ishant kaun?
7: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
8: Khat khat, who that?
9: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi.
9: It's hot.
0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वे वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9।
11: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर।
4: गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7।
12: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
4: दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
13: जिधर तू पीछे यातन गीना चौपर जोगी डब दबीना।
4: उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
14: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में।
4: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन, 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है.
1: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप. यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी. आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या करूं?
2: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की सारी लाइमलाइट लेकर चली गई थी रेखा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इस शादी में रेखा की जो एंट्री हुई थी वो बॉलीवुड के मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। रेखा आई थी व्हाइट साड़ी पहन के, बड़ी सी लाल बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी और माथे में सिंदूर। उस टाइम उनके और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी थे, तो सब लोग उनकी तरफ, सारे कैमराज उनकी तरफ देख रहे हैं। वो वेडिंग रिसेप्शन में आई आरके स्टूडियोज में, जहाँ ये हो रही थी गार्डन वगैरह में, और आके शी वॉज लुकिंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो अमिताभ बच्चन तब मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहे थे, वो उनके पास गई, उनको हेलो वेलो किया, इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़ी देर बाद जया बच्चन जो वहाँ मौजूद थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बाद रेखा ने इस बात में क्लैरिटी दी कि वो किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही थी और डायरेक्टली वो आ गई थी, तो ये सारा कुछ सीन हुआ था। फिलहाल सीन थोड़े म्यूजिक का, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Madam, disturbance aa rahi hai kya abhi?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
4: हैं, मोबाइल पे?
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार, खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब।
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद।
3: डिस्टर्बेंस आ रही है।
5: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, थोड़ा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
8: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
9: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
10: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

एक लड़का भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन से उतरी, वो लड़का भी उनके पीछे पीछे उतरा। लता जी ने एक टांगा लिया स्टूडियो जाने के लिए, उस लड़के ने भी एक टांगा लिया। वो टांगा उनके टांगे के पीछे पीछे चलता रहा। लता जी का टांगा स्टूडियो पे रुका, वो वहाँ पे उतरी, वो लड़का भी वहाँ पे उतरा। लता जी घबरा के अंदर गई तो पता चला कि वो लड़का तो अशोक कुमार का भाई किशोर कुमार था, जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करने आया था। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: घर दे कम ना रुकणगे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her,

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन.
5: इट्स हॉट.
6: पुरानी जींस विद जारू ओनली.

0: इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस फिल्मों में से एक है गाइड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाइड बनाने का ख्याल कैसे आया था, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में देवानंद साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पर्ल बक, नोबेल लॉरियट, जिसने किताबें लिखी जैसे गुड अर्थ, वो इंडिया में आई, उन्होंने पिक्चर बनानी चाहिए हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ। सबसे मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, हम कुछ क्लिक हो गए कि देव साहब आपके साथ फिल्म बनाते हैं। क्योंकि देखो भैया, हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर हमें बाहर काम करना पड़े किसी बाहर के मुल्क में, तो जब तक हमारा सेंट्रल रोल नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। फिर तो मुझे किसी ने कहा कि गाइड पढ़ो, जो गाइड का रोल है देव साहब, वो अपने भाई इंटरनेशनल उसको इंटरनेशनली बनाइए। मैंने गाइड को पढ़ा, मुझे लगा कि गाइड का ही कैरेक्टर इंटरनेशनली बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहेंगे। मैंने पर्ल बक अमेरिका में फ़ोन किया है, मेरे पास एक किताब है गाइड, अगर आप उसको पढ़ लें तो अगर आपका मन चाहे तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा गाइड तो हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा उसको बताइए आगे कैसे बढ़ें, कि आप अमेरिका आ जाओ। तो मैं अमेरिका पहुंच गया, उनके जाकर बातचीत हुई, हम क्लिक हो गए।
0: वैसे मैंने लाइफ में पहली बार देवानंद साहब को पता है कब देखा था, गाइड फिल्म में ही, बिकॉज मेरे फादर ये फिल्म बहुत देखते थे। छोटे होते ये फिल्म बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन फिर जब बड़े हो गए दोबारा देखी तब समझ में आया कैसे ये फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खटखट,
6: कौन है?
5: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खटखट, हु दैट?
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

वही सिंगर शब्बीर कुमार को जब लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला तो शब्बीर कुमार जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अक्सर कई सिंगर्स का यही हाल होता था जब उनको लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिलता था, तो ये जब रिकॉर्डिंग करने गए वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई या सिंगिंग बंद हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी आरडी बर्मन इनको क्यूज दे रहे थे कि अब म्यूजिक खत्म हो गया, अब तुम्हारी वोकल्स की बारी है, सिंगिंग की बारी है, लेकिन ये गा ही नहीं पाए। तब लता जी ने एक ब्रेक लेने को कहा, वो इनके साथ बैठी, इनके लिए चाय वाय कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको कंफर्टेबल किया, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। ये गाने थे बेताब फिल्म के, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
2: अरे होचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। आइकॉनिक सिंगर के येसुदास का हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ था इस गाने से जो हम अभी सुनने वाले हैं। 1976 की फिल्म चित्र चोर। इसका ये ब्यूटीफुल गाना कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन और येसुदास जी को इस गाने के लिए उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आगे वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
4: मैं कहाँ पर हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
5: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans Charu ke saath, sirf Mirchi par.

अगर आपने लाइफ में प्यार किए या मूवी नहीं देखी है ना, तो अपने आप पे एहसान करो, ये फिल्म देख लो प्लीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैंने ना ये फिल्म बिट्स एंड पीसेस में देखी थी रिसेंटली, मैंने पूरी देखी एंड व्हाट अ फन फिल्म टू वॉच। एक तो देखो इसमें वो आइकॉनिक सीन है, कॉमेडी सीन, जिसमें महमूद जी एज सन, ओम प्रकाश जी एज फादर को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाय द वे, अंदाज अपना अपना में जो महमूद जी की वाह वाह प्रोडक्शंस है, वो नाम इसी फिल्म से आया है। एक और चीज इस फिल्म से आई है, 90s की फिल्म हसीना मान जाएगी में जो गोविंदा संजय दत्त के चाचा बन के लड़की के बाप से मिलने नहीं जाते, ओ यार वो चाचा वाला जो किरदार है वो भी इसी फिल्म से आया है, प्यार किए जा से, जहाँ पे किशोर कुमार जो शशि कपूर के दोस्त होते हैं वो शशि कपूर के फादर बन के जाते हैं। व्हाट कॉमेडी, प्लीज डू वॉच पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: आएंगे दीदी. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
4: पुरानी जीन्स विद शाहरुख ओनली ऑन

0: आपको पता है एक्ट्रेस नूतन को उनकी मदर जो खुद एक एक्ट्रेस फिल्म मेकर थी शोभना समर्थ जी, उन्होंने अर्ली 50s में जब नूतन जी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत ही कर रही थी, उनको एक साल के लिए स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए कि एक्ट्रेस बनने के लिए उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रेस, वो निखार आ जाए। उनकी यंगर सिस्टर तनुजा जी को भी स्विट्जरलैंड भेजा गया था, लेकिन फिनिशिंग स्कूल में नहीं। इनफैक्ट एक्ट्रेस बनने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई वेंट टू रेगुलर इंग्लिश स्कूल क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस का बड़ा शौक था और मुझे डिप्लोमेटिक सर्विस में जाना था। सो दे थॉट दैट इफ आई वेंट टू अ स्कूल इन स्विट्जरलैंड इट वुड बी बेटर फॉर मी, आई वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू माई लैंग्वेजेस एंड गो इनटू द डिप्लोमेटिक फील्ड एंड आई वाज गोइंग टू कम बैक एंड डू माई IFS एटसेट्रा एटसेट्रा। डिड नॉट हैपन। And I came back because we had a financial crisis in the family, and the only profession that I could think of doing, and which my mother thought would be easy for me to do, was this, and we needed the money. So,
0: भाई as a child actor तो तनुजा जी ने एक दो फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत as main lead हुई थी 1961 में with a film called हमारी याद आएगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओह वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड
2: बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: 89.6
0: मिर्ची। पुरानी जीन्स विद चारू।

0: प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पे जिस तरह के रोल्स करते थे काफी लोग उनसे डरते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो किस चीज से डरते थे सुनिए। एक बार सपनी नाम की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या इंसिडेंट हुआ था उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: तो उन्होंने साहब मुझे कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है, शॉट ये है कि आप सपेरे हैं, ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ, इसके अंदर सांप है। ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना। पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज से डर है तो वो सांप से है। बचपन में कुछ होता ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा कुछ ऐसा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, खोलने की हिम्मत ही नहीं। अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका। मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो पहले बताना चाहिए, ये तो पिक्चर ही सांप होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वांत निकाले होते हैं। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है, आई कैन नॉट होल्ड इट। नहीं तो एक नकली सांप तो कर सकेंगे, मैं कहा नकली सांप से तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ।
0: वैसे किसी फिल्म में उनका ऐसा डायलॉग भी था कि सांप से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं टस लेता हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

आपको पता है जब अभिमान फिल्म आई थी तो ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ये फिल्म किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा की लाइफ पे बेस्ड है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तो किशोर कुमार की फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा बंगाली सिनेमा की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सिंगर डांसर थी। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह ये थी कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक होम मेकर बने, एक हाउस वाइफ बन के रहे, जबकि वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। वेल, अभिमान फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का टैलेंट वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। तो किशोर कुमार को जब ये बात की रूमर्स कहीं से पता चले, ऐसा सुनने में आता है हाँ कि इस फिल्म के दो सॉन्ग्स वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब उनको ये पता चला उन्होंने बाकी के गाने गाने से मना कर दिया। फिर बाद में दूसरे मेल सिंगर्स को उनकी जगह पे लाया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
4: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
5: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
4: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
5: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
4: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
5: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
4: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, आप दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
5: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
4: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
5: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
4: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
5: नहीं, मेरे को दिए आपने?
4: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
5: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
4: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
5: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
4: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
5: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
4: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
5: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
4: हाँ जी।
5: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
4: गलती होगी साहब जी,
5: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
4: पकड़ ले,
5: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

आपको पता है लिरिसिस्ट इंदिवर जब टीनेजर थे तो फ्रीडम फाइटर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लेट 30s अर्ली 40s की बात है जब उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, रिसाइट करते थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें करीब 3 साल जेल में भी रखा था। वैसे पूर्व और पश्चिम फिल्म का भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ इंदिवर साहब ने तो लिखा है और उनकी रेंज एक्चुअली उसके लिए तो अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल श्याम लाल बाबू राय जी, इंदिवर जी का ये रियल नेम है, उनका लिखा हुआ एक और गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6 89.6
2: It's hot.
3: घर दे कम ना रुकन गे ओ जम विच फटे चकांगे
4: You better watch

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: पहलवानी और म्यूजिक क्या ही तगड़ा और सुरीला कॉम्बो है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही कुछ कॉम्बो था सुरेश वाडकर जी के घर में। उनके पिताजी पहलवान भी थे, म्यूजिक भी सुनते थे। सुरेश वाडकर ने भी ऐसा किया, शुरुआत में थोड़ी पहलवानी भी की और फिर म्यूजिक में आ गए। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मेरे फादर कुश्ती करते थे, वो मट्टी वाली कुश्ती, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां की है अपने जमाने में। उसका ही असर कहिए, कंपलसरी अखाड़े में तालीम में जाना पड़ता था ताकि सेहत ठीक रहे थोड़ी सी। मगर वो भी, पिताजी भी संगीत के बड़े शौकीन थे, भजन वगैरह गाते थे, तो छोटेपन में वो भी एक जो हमारे ऊपर असर रहा संगीत का, वो बचपन से ही, और उसकी वजह से सडनली मुझे गाते हुए सुना उन्होंने। 4 साल की उम्र थी मेरी और उनको कहीं से लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो उस दिन से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। 4 साल का होऊंगा,
0: बस यहीं से शुरू होके लड़के ने फिर अपने म्यूजिक करियर में 4 चांद लगा दिए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान ऐश्वर्या राय
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर कटरीना कैफ
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: खटखट
7: हू दैट
6: भट्ट
7: भट्ट अरे भट्ट हूँ
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
7: खटखट हू दैट
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.

ओए होए होए होए, लव इश्क प्यार मोहब्बत फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ज किया है गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। एक और सुनिए, जिगर मुरादाबादी कहते हैं, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, अदना छोटा सा, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

पल पल में।

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है